0: ودي هيك ميجاهرتز دي هي فين.
1: ए मावेस सुट्टा लाफिंग
2: आहार में सुट्टा लाफिंग
3: ए लिस्ट को मावेस ही मना ला
4: अमिल्ल फैसा आंदा गें अमिल्ल हाशिंगडा गेल्लुन दिरुमकी किहा मोय कमे ए में मावेस सुट्टा लाफिंग
5: दुमफई आहार में गे हाथुरे दुमफतु के इस्तेमाल कुरुम के साबुन दिमावा सिही मसल तोगा आहार को हम मिलियन वुरे किना मीहु मरवा कमा ताफास हिसाब तकुन दक्का फस नुजेही अवह दुमफतुगे इस्तेमाल कुरुं हुट्टा लमाहिंगा
6: दिवे ही एफएम नुवदिह 1 मेगाहर्ट्ज
7: मी अहमद

रेची गाली दे के पप्पू की साली जाके बोली फिर पान चबा के यू कैन डांस सारा संडे के संडे फिर पप्पू जाए डांस क्लास अंडे पे अंडे खा के पप्पू नाचे दिन।

0: मुन्ना को बाकी ही ना के देड़ा ही है
1: अल्हम्दुलिल्लाह मुन्ना रंगल हालो में देड़ा ही है
0: अफनस देड़ा ही है मुन्ना मुन्ना कोम वड़ा में के दक काफ़ूं अता
2: मुन्ना थी है बुरको वेंडना हिंका में ने अफन थी कं कोलन ना
1: थी को तुम हाउ द हाई रंगल लाए थी हैं मुन्ना एक ही आह हाल बला फे मुन्ना रकां कं को देन्ना है थी मुन्ना वरहा उपावे

मंगे वेरी रस खलांगे इखमगा तिमन दिव्वा फावा बार तिय जिजी यवरे मार अंगले फाहे तिय बै मीहं बार लादी तिमन्नाया वागी वेरी वाशे एरुं तिय बै मीहुन्ना एवरेन्ना दिमिदु हुरहे लादे होशे में।

0: दुआ को सारे गीतों का जैसा सारो वादा नंत
1: नो
0: प्रॉमिस
1: प्रॉमिस
2: एमी हम था अबदो एकु गवो मा बाउ दवे.

0: हमको नहीं पता सर सही क्या है और गलत क्या है सर. बस छोटो बाला से वो यही कोशिश किया है सर कि सही करूं. मेरा बाबा ने बोला था बचपन में कि देवी पढ़ो लिखो, तो हमने बीएससी कर लिया सर. फिर हमारा माँ ने बोला शादी कर लो देवी, तो हमने शादी कर लिया. फिर मेरा हस्बैंड अनिरुद्ध उसने बोला नॉर्वे जाके सेटल करेगा, वो सही है, तो हमने वही किया सर. फिर नॉर्वे वाला ने बोला कि बच्चा लो फॉस्टर घर में अच्छा रहेगा, वो वही सही है. पर सबका सही करते करते हम इतना गलत कब हो गया पता ही नहीं चला. पर आज हम सबका बताया हुआ सही नहीं करेगा सर. हमको जो सही लगता है हम वही करेगा सर. हम अच्छा माँ है बुरा माँ है पता नहीं, पर माँ हूँ सर. और मेरा लिए यही सही है कि हम मेरा दोनों बच्चा लोग के लिए लड़ूं. एक कोर्ट में अगला कोर्ट में जिस जगह हमको न्याय मिलेगा दुनिया का कोई भी जगह वहां जाके हम लड़ूंगा, क्योंकि एक माँ के लिए यही सही है सर, यही सही है.
1: मी कौन फिल्म में कही मैंने डायलॉग है. मिसुआ के जवाब फणवाणी पी एस एम आमे दो को बालाना साड़ी शोया जवाब फणोम की सुंगड़िया की अंगार दो होगे मेंदम बार गड़ सु मिनट कौम में हफ्ता एक वस्कूरी एक गेंदा बालालन साड़ी मिशो के गेनेस ते केस्त डायलोग के एम में गिन सुआल तो के जवाब रंगल कुरा बैवरे का महा को एफारो नगा गुरातुं खास हादिया एली बेने एम में गिन सुआल के जवाब रंगल कुरा बैवरे नगानी कौम में महे गिवस एम में फाहुशोगा
2: केस्त डायलोग मी वालदिनी मी हफ्ता के गेस्ट डायलॉग गेस्ट डायलॉग मी बाया जवाब फोनो मुदानी पीएसएम यामे देर को बालालन सली शोया मी हासा शो गे इतुरु बैतक दिम गे कुरिंग दिवे हि अमिल राव गे लव हिमनाल देना लव एफ शो गे कुरिंग कुरि बैतक आय की का बदल को लाना

0: हमको नहीं पता सर सही क्या है और गलत क्या है सर. बस छोटो बाला से वो यही कोशिश किया है सर कि सही करूं. मेरा बाबा ने बोला था बचपन में कि देवी पढ़ो लिखो, तो हमने बीएससी कर लिया सर. फिर हमारा माँ ने बोला शादी कर लो देवी, तो हमने शादी कर लिया. फिर मेरा हस्बैंड अनिरुद्ध उसने बोला नॉर्वे जाके सेटल करेगा, वो सही है, तो हमने वही किया सर. फिर नॉर्वे वाला ने बोला कि बच्चा लो फॉस्टर घर में अच्छा रहेगा, वो वही सही है. पर सबका सही करते करते हम इतना गलत कब हो गया पता ही नहीं चला. पर आज हम सबका बताया हुआ सही नहीं करेगा सर. हमको जो सही लगता है हम वही करेगा सर. हम अच्छा माँ है बुरा माँ है पता नहीं, पर माँ हूँ सर. और मेरा लिए यही सही है कि हम मेरा दोनों बच्चा लोग के लिए लड़ूं, एक कोर्ट में अगला कोर्ट में जिस जगह हमको न्याय मिलेगा दुनिया का कोई भी जगह वहां जाके हम लड़ूंगा, क्योंकि एक माँ के लिए यही सही है सर, यही सही है.
1: मी कौन फिल्म में कही मैंने डायलॉग है. मी सवाल का जवाब फणवाणी पीएसए में आमे दोर को बालाना साड़ी शोया जवाब फणोम की सुंगड़िया की अंगार दोह के मेंदम पार गड़ सुम मिनट कम में हफ्ता को स्कूरी एक गिंदा बालाना साड़ी मी शोग गेनेस्ते केस्त डायलॉग के एम में गिन सवाल तो के जवाब रंगल कुरा बैवेरे का महा को एफआर नगा गुरतुम खास हादिया लि बेने एम में गिन सवाल के जवाब रंगल कुरा बैवेरे नगाणी कोमे महे गिवस एम में फहु शोग
2: केस्त डायलॉग. ফিল্মী দুনিয়াগা কুরিং উফাদ্দাফাওয়া ফিল্ম তং আলুং উফেদ্দুমাকি ওয়ারং আমুকামে এ ফিল্মেন আলুং এহেম মুলিং আ বেলুন তেরিনতাকং আমাজ কোং আ স্টাইলেগগা হুশালা দেকামে বাইফার ফিল্ম তাকলিবে ইতুর কুরিয়েরুমে মি হফতাগে এরা মিহার মিবাগা মি বালালানি এফাদা ফিল্মকা
3: এরা মিহার

0: Live i FM, nur die Ecke Megahertz.
1: Mi hafta ge film edatur mi hasabun nim malana. Ummid kurani mi hafta ge show ge mi himnal din series ta ki ti ehun terin balaluma show ge rekan ufedigen dia series ta ka vegen dia kama. Nim mam ge kurin guest dialogue ge suala rangalu jawab fonoma handa kola den.
2: Guess the dialogue.
3: हमको नहीं पता सर सही क्या है और गलत क्या है सर बस छोटो बाला से वो यही कोशिश किया है सर कि सही करूं मेरा बाबा ने बोला था बचपन में कि देवी पढ़ो लिखो तो हमने बीएससी कर लिया सर फिर हमारा माँ ने बोला शादी कर लो देवी तो हमने शादी कर लिया फिर मेरा हस्बैंड अनिरुद्ध उसने बोला नॉर्वे जाके सेटल करेगा वो सही है तो हमने वही किया सर फिर नॉर्वे वाला ने बोला कि बच्चा लो फॉस्टर घर में अच्छा रहेगा वो वही सही है पर सबका सही करते करते हम इतना गलत कब हो गया पता ही नहीं चला पर आज हम सबका बताया हुआ सही नहीं करेगा सर हमको जो सही लगता है हम वही करेगा सर हम अच्छा माँ है बुरा माँ है पता नहीं पर माँ हूँ सर और मेरा लिए यही सही है कि हम मेरा दोनों बच्चा लोग के लिए लड़ूं एक कोर्ट में अगला कोर्ट में जिस जगह हमको न्याय मिलेगा दुनिया का कोई भी जगह वहां जाके हम लड़ूंगा क्योंकि एक माँ के लिए यही सही है सर यही सही है
4: मी कौन फिल्म में गई मैंने डायलॉग है मिसुअल का जवाब फनवानी पीएसएम में आमे दोरे को बालानं साड़ी शोया जवाब फनों में के सुंगड़िया की अंगार दोहोगे में दम बार गड़ सुमिनट कौन में हफ्ते को स्कूली एक गिंदा बालानं साड़ी मिशोगे गेनेस्ते केस्टर डायलोगे एम में गिनस वाल तोगे जवाब रंगल कुरा बैवेरे का महा को इफ्फारों नगा गुरोतुं खास हादिया एली बेने एम में गिनस वाल के जवाब रंगल कुरा बैवेरे नगानी कौन में महे गिवस एम में फाहुशोगा
2: गेस्ट डायलॉग
1: ಹಫ್ತಾಗೆ ಶೋಗವಿಸ್ ಹಂದಾನು ನುಫಿಲಾಫದ ರೀತಿ ಹಿಗ್ಗ್ಯಾ ಮದಿ ಬಾಲಾಲನ್ ಸಳಿ ಇತುರು ಫಿಲ್ಮ್ ತೋಗೆ ಮೌಲು ಮಾತ್ಕಿನ ಸಿನಿಮಾ ಮಿವಗುತ ತಿಯೇಹುಂತೇನ ವಕಿವಿಲಾನ ಎಮ್ಮೆ ಹಾಯಹುಂತೇನ ಬಾಜವಿರ್ ವಗುತ್ ಕೊಳಕಂ ಎದೆ ಅಸ್ಲಾಮ್ ಲೇಕುಂ
5: ಬಾಲಾಲನ್